काट्या, प्योर हार्ट शोज पाथ टू गुडनेस, प्योर हार्ट कन्फर्स एक्स्ट्रॉर्डिनरी पावर ऑन अर्थ. द प्योर हार्ट अलोन इज वेरी इंपॉर्टेंट. डू नॉट फॉरगेट दिस गुड वर्ड.

काले संप्राप्ते सन्निहिते काले नहि नहि नहि रक्षति दुःखं करणे नहि नहि रक्ष